0: किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें।

दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

0: Hi, Martin. It's Akira Johannesburg for the Take Two. Could you please play these songs from Haewon, Merehiro Hewo, and Rangiara? Thank you.
1: लेके जन्म लेके पहला पहला कदम जब चलते हैं हम उंगली थामे कोई लिख रहे हो ना

जो हमने जाग जाग की ऐसी भागम भार कि हम कभी आ गए कभी हुआ गए कभी ही आ गए कभी हुआ गए कभी इधर भागे फिर तुम न दिया ये पान तो आई हमरी जान में जान तो आई हमरी जान में।